0: संग संगी बंसा माखने की लगना वाला हो एरा मुहार था पाके पाने की एक रानी सी साको ए मीर माया की रानी साको ए मीर माया की रानी साको।
1: नमस्ते म गायक तथा संगीतकार टीका भण्डारी अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँकै प्रिय रेडियो स्टेशन ग्रेस एफएम 107.6 मेगाहर्ज।

0: भोलिको पार्टी चाहिँ मिस गर्नु भएन है। आमै म त नजाने भयो। होइन फेरि के भयो तपाईँलाई, बिहे पार्टी यस्तो फङ्सनमा त झन् चिरी च्याट परेर हिँड्नु पर्ने ठाउँमा कहाँ नजाने भन्नुभयो भाइ।
1: कुरो त्यसमै त छ नि, यस्तो मङ्गी छ गतिलो कोट पाइन्ट छैन यार। त्यही क्या पुरानो कोट लगाउनु नयाँ किताब पढ्नु भन्छ नि, किताब पढ्यो बस्यो।
0: फेरि त्यो उखान त पुरानो भइसक्यो, अब त नयाँ कोट लाउनु नयाँ पुस्तक पढ्नु पो हुन्छ त। होइन के भने सही भने मात्र रु 6,000 ओम शक्ति टेलरिङले छानी छानी एकदमै राम्रो सुट सिलाएर दिन्छ क्या। त्यति भएपछि भएन त,
1: मात्र 6,000 कोट पाइन
0: हो नि।
2: हजुर, ओम शक्ति टेलरिङमा मात्र 6,000 छानी छानी लाउनुहोस् निकै आकर्षक डिजाइनका कोट पाइन्ट, साथै हामी कहाँ आकर्षक डिजाइनका भर पर्दो सिलाई, उच्च स्तरीय सटिङ सुटिङ, स्कुल कलेज तथा अफिसियल ड्रेसहरू पाउनुका साथै रेडिमेड कोट पाइन्ट सर्ट लेडिज सुट र दौरा सुरुवाल अर्डर बमोजिम तयार गरिन्छ। प्रोप्राइटर राजकुमार पण्डित, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 49 72 85 68, 98 0 38 19 519। ओम शक्ति टेलरी, राम मन्दिर 4 भक्तपुर।
3: नमस्कार, म कलाकार मुकेश प्रकाश, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ ग्रेस एफएम 107.6 MHz। नेपाली चलचित्र र नेपाली चलचित्र कर्मीलाई सबै माया गर्नुहोस्।
4: आछी मेना ढिगु दु वापत्ति कया आत्मिकी रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ जुगु विश्वास के चमकया दु। अमृता महर्जन कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ के सकसिता नसको छ। थोयागो वचनिया शीर्षक दु भविष्यवाणी याना तम मसिह जुगु विश्वास के चमकया दु भाग 3 चुना चुनगो संसार यात्रा परमेश्वर नापा दिलको बोले छोसगो अजु साय पूर्व स्वर्ग ख आदम पाप याबले धक्को संसार छगो अजु साय पूर्व स्वर्ग पाप पो ने जागो संसारे झिल आदम या पाप या मुखले त मनुदे त मुक्तिदाता माल येशु ख्रिस्ट मसीह ख निकन अभिषिक्त जुयादिन ख मानव जातीय भावी उद्धारकर्ता या जन्म जुत लगभग पेरो द लगेजुल फुलाको मूल या इले परमेश्वर या त मतिना यही मनुदेश भविष्यवाणी या न त मुनि या त आगमन या त धैर्यतापूर्वक प्रिया सुन यी छो मसीह पृथ्वी राज्य स्थापना यही प्रिया सङ्गो ख गण भूमि व शान्ति राज्यलाई पुराको मूल या विश्वासी के या नीति भविष्यवाणी या मसीह जुजु या बारे भाँडाको छुके महत्वपूर्ण ख वो इनको आशा हो मुक्ति या प्रतिनिधित्व ख यति नियमित पुराको मूल या भविष्यवाणी यी थो मसीह या बारे स्पष्ट रूप धरातो गुदो कि हो या त वो या शत्रु तेगो चेतनहरूको शक्ति वो अधिकार पिउगु वो यागो राज्य पृथ्वी स्थापित छुगु श्री थजानु बचाया खे इतने तस्को सचेत जुया सुनगु ख भजन 89:27 पद के दयाता बुदो आफ्नो वो या त थम क्या वो पृथ्वी या जुजु तिनीगु नाय देखाली दानियल 7:27 के दयाता बुदो पृथ्वी फुक्क राज्य यो शक्ति वो तसा दक्ले तमा परमेश्वरिया पवित्र मुनिया वो ले बी वैकया राज्य न्याले दया सुनेको राज्य जु फुक्क राज्य वैकया खनि वो वैकया वो सेवा यही उनको मुनिया भविष्यवाणी यी स्पष्ट रूप लेखना तबु मधुको खु धासा यशु या त जुजु जुया शासन ल्याए नापा चोला दाया कुसे योखाना दुख यसो थगो दुख हो मृत्यु या आवश्यकता या त थुके त श्रेवले थुगो विचार या त ढङ्गो प्रतिरोध हुन मत्ती 16:21-22 को दया त बुझ उग्ने निशे यसो चोला या त ठाठिक दया दिन एरुसलेमे हुना जी थकाली पि तपे पुजारी त वो शास्त्रीय राते दुःख कस्तो फेमानी लिपा इन्सित स्याना छु अले सुन लिपा जी हात्म मना वे ठोलिएना पत्र छेकयाका बोधिया थछे धाल परमेश्वर थछे मना दि मुखो प्रभु थछेला छि त गुब्ले जी मुखो यदि मुख यसु यादव क्रुसे योगाले योगाको आवश्यकता कया पत्रसँग कछिना ठुली क्लाजेफो ख्रिस्ट फरक रूपे ओ सब दुख कष्ट मुगे अहिले सेवकिया रूपे मेरो लिपा यहुदिया सिंहासन या रूपे मुनिको ख कुराको मूल्य भविष्यवाणी स्पष्ट रूप मिथुना तौगो मधु मुसिंह वो पुनरुत्थाया ख मिथुना तौगो दु तर यहुदी पेश इनगो बारे सत्य ख थ्रीके त इति उनी स्पष्ट मजु वैकया पुनरुत्थान लिपा स्वर्गीय मुनिको ख न स्पष्ट मजु पुरानो नियम तयाबो सुना छोडिन मुगु बाचा ख मुगु नियम तयाबो प्रकट जुगो पुरानो नियम ख क्रुसे यसु ख्रिस्टिया मृत्यु वैकर या अनुयायी ते त तस्को चिन्ता या विषय जुल इम्स वैक सुना मना वै धका आशा मयागु ख मेक शिवको सुन लिपा निशा त डेपे हुना यीशु या सी म अन मधुगु खन अनि निम्न स्वर्गदे त्यसमा यीशु सिम माना मगु खन फेरि त्यसमा निशा ते पाखे ठोख नियमले यीशु विश्वास माया लुका चौबिस यु दोस्रो एघार पदके धा त बुधो ठोख फेरि ते त धा उपी मरियम मग्दली यो अन्ना वो याकुबिया मा मरियम वो इपिन नाप वोपी निपी निशा त ख एन ठोख प्रेरित त बाख छि जक्क झुल इन्स ठोख विश्वास मया मया छु यी लिपा हे यीशु स्मरण या न मुना सङ्गु निम मनु त नापला त वेखल खन कि यीशु या त जुगु ख इपिन तस्क चिन्ता जान छु न वेखल इनके थुकिया बारे नेनी बले इनगो निशा थुकथा ख लुका चौबिस यो बीस एक्काइस पदे धात बुधो जिमी त धपी पुजारी त हो शासक देश वैकया त स्याना छुगु फैसला याना कुसे यो खाना मिल जिस ला वैक यहाँको पाखी हे इजरायल देश लिफाना क्यारी खै धका मुटी तै दुख थुख छे हे ते थे जुगु थौ न सोनु दत इसरायलिया त मुक्ति याई म यसो हे जुई धका निमो मनु त्यस आशा या त सायद इन्स इसरायलिया एघार यो चार हो मुनिको थासे मसिंह थ शत्रु ते त मुका जुजु जुया शासन याईको बारे विषय या त गु भविष्यवाणी छुका चुङ्गु ख अनि आ इन्स वेक या त क्रुसे यो खागु ख निना लुका चौबिस यो पच्चिस यो सत्ताइस तक धातको दो अनि वेक न याना दिल छिला मूर्ख मुनि त जोया सुन खने अगमवक्ता त्यस धागो फुक्क खे विश्वास याई त छिन्छ थाको चाया सुन छु मुक्ति दिन ख्रिस थपे दुख सिना तिमी पद जीको मखला अनि वैकल मुसा निशे कया फुक्क अगमवक्ता त्यस धर्मशास्त्र चोया थकु गो वैकया गो हे ख चाथुका दिल यसो पुनाको नियम थगो बारे युगको भविष्य बारे उद्रेदियाना दिन मुझे वैकया दुख कष्ट या मृत्यु र विजय पुनरुत्थान न समावेश दु वैक थुपी निम्न मनित निशे थुबु धर्मशास्त्र निन्दा दिएको ड्रिफ हो यसै या त्रिपन्न एघार के धरात बुधो यो थको प्राण तसको शास्ति नै ढुङ्गा ऊ जीवन या जखने अले थ निरमे थगु ज्ञान न याना जी धन्य दास युक्कुसित धन याना बी वही इम्बु अधर्म कुवि यसो सायद थब पुनरुत्थान अनन्त महिमा प्राप्त याए न थसा भोगिया मागो दुःख हो मृत्यु बारे इन्द्र थ्रीका बिरा दिगो छुरीमा लिपा विकन थ चिना या त मने खने दत लुका चौबिसु चौवालिस सन्ह छयालिस ताक धात बुध अनि विकन इन त धारिल जे श्रीनाप दुब्ले जीव बारे धर्मशास्त्र अर्थात मूसा या व्यवस्था अगमभक्ता ओ फसले सफुली छोया तबु फुक्क खुन के मा तका नापा हे धुङ्गु ख अनि धर्मशास्त्र थुसे के त इन्गु निग च्याका वैकन धयादिल मुक्ति बिम ख्रिस्ट सिना हालौ सोनु दका मना वेमा तका छोया त कुदु यति मेनेपी पुलागु नियमे ऐश्वर्या दुःख मिटिया भविष्यवाणी याना त कुदु तर अस्पष्ट रूप बिहा त बुख उके अप्प मनुते छ उनी भविष्यवाणी या त ढाक्यन ठुके वास्तविक घटना जीमार्गो आवश्यकता दुबुख आज प्रभु नियम या छु भविष्यवाणी या त जहाँ स्याए त इनाता याना बुके स्थित यसो या त ताथ्य मसिंह थका मसिके त बहाली याई इतिहासे युगको मकुपी अगमभक्ता त दु अले भविष्य न युगको दैगु सम्भावना दु भविष्य जिसे गठिना सके फै कि यसु ख्रिस्ट ताथ्यम मसिह ख उपले मकुपी अगमभक्ता त मध्य सम मखु यसैया एकसठी एकै ध्यात बुध मजा मजा पिन्त भिङ्गु ख निजित परम प्रभुसित निरा दिबु नै परम प्रभु परमेश्वरिया आत्मा झिकेदु मृग कुटुम्ब पिन्त ल्याका भित चिन्ता प पिन्त तोटका भित हो खुला त पिन्त छुटकारा आए घोषणा आए त वेकलाजित छोया हौ बुधु यो पनि यसो थको सेवा या सुरी थवी भविष्यवाणी सार्वजनिक दिन जिस थो लुका चार्यो सत्र निशे उन्नाइस पाखे सेके फु थुकी मसिह या त परमेश्वर या पवित्र आत्मा या वरदान दिगु धका भविष्यवाणी या ना त बुधु थुकी हो या त शक्तिशाली ज्या या त शक्ति भी यसो बक्तिसमा क्या बोले पवित्र आत्मा या वरदान प्राप्त याइगु दुगु ख अनि वैकन थगु सेवा न्याकि बोलेन थोहे वरदान बिया दिगु ख यसो थो आत्मा कया दिगु प्रमाण बेजी या त लाकेगु सिपिन त माकेगु दोनन्द मनुते त नकेगु बासे या त शान्त याएगु हो ले लयके यसो बोलेगु थजाको अझ चापुगु ख बारम्बार बिया दिगु ख यसो या पैतिस पाँच सौ छ के धात बुधु अनि कहाँ पिनेगो मिठास साकाजी अनि फ्राकेगो मिप साकाजी अनि नन्दुरा पिन चल्ला थिए तिमी खाक त ले तारी तस्मा आले गङ्गु ब तज्याना न पिहाओइ अनि मरुभूमि खुसी बा नै थल छोगु भविष्यवाणी दुखी मसिंह कहाँ पि बैरा पि हो लङ्गडा ते त लागेगु दुगु फुक्क हो या त मिका पाँच यो दुई के धात बुधु तर हे बेथलेहेम एक प्राप्ता छ यहुदिया कुल त मध्ये दक्षिण छी ढङ्गो झुसा जीवी लागि छङ्के छम हिंस पिहा हुई भुसिन इजरायलियाट शासन नै भुसिगु सुरु पुलाउ इन निसे अर्थात दक्षिण नापा या इन निसे हिन्दु मसिंह बेथलेहेम मे बुई बुझी थो भविष्यवाणी मुक्ति दुई पाँच निशे छ के ज्योतिषी तेस धागु ख उके इस वैकन गण लुजे बुढका सिके फै यसैया त्रिपन्न सात के धयात बुझो वो कुटेका चुनी माल वो शास्ती झुल ए न हो थगु मुटु छस न स्वात युगु म सी धर्म भ्यासाई त थिए हो या त युङ्कन के चाहिँ निस्यु मने खै सुख सोधे थु म थगु हुटु छु नमुवा यो तिन निर्मिति थो भविष्यवाणी यही कि झोले ढुङ्गा दामलाक्क द्या ढुङ्गा मसिंह थगु बचाउ या त वा थ त जङ्गु ख गुनासो याई त थगु मुटु च्याकी मुखु थो ख यसो ख्रिस्टिया ख त तस्क सत्य साबित जुल पूजाहारी हो ठकरी पिन्छ उया त दोष पिन म छु निस मभ्यौ म ती सत्ताइस बाह्रकी धारा त बुदो अछि यसरी त्रिपन्न बाह्रकी धारा त बुदो अछि रिया जी तपी नापे उया त न छबो भाग दि म लाका हबो मान बोल्ला पिन्स छाधासा ओ थगु जीवन पाना दिन भो पापी त नापे उया त निया खात हो यो कुसीको पापको बिल हो पापी के हो नीति स्वापो तै मजुल मसिह या त दोषी ठहरे याना अपराधी त निसे ल्या खागो भविष्यवाणी यागो ख यसु या त जोला दागु वो लिपा अपराधी ढका क्रुसे यो खागो यिनी थो वास्तविक जुल यसै या बहुनै सौदको हात बुदो गथे हो खना युगको मनो त गजब जुल ओयाको रूप मसिके हे मसैक ओयाको रूप मुया स्वयान अप्पल सङ्गु ख मेरो थो भविष्यवाणी सायद यसु या त व्यस्त मने या बगैँचा प्रार्थना ल्याए त हो थ अब या त थो भयानक अवस्था बचे जीवु मृगु नपु दुला धका निमित प्रेरित यागु ख अन्त यसो थ त जुनि त अनुमति दिया दिन अनि थगु भविष्यवाणी पूर्ण यस होला त निमितक मत्तिक दासुन मोया के थगु क्रिस लोनेगु शक्ति ताको मन त ठुलो भविष्यवाणी या सानम से चिस थ्रिकेमा कि पुरागु नियम ल्याग्ने थमा थ्रिके फैगो मुखो थुलेकी चित्र नागु चित्र पुन्टे त वो नपुनागु नियम या खन यक्को खण्ड या वास्तविक अर्थ केही त फेरि सुसमाचार या सफोमा यसो दुख सी होला वै अले स्वर्गीय थाहा हुने थुप्रै हिब्रु पुस्तके स्पष्ट रूप मुखनाट बुझ्याख मुखो पुरानो नियम दुबु भविष्यवाणी त दक्कै त ढङ्गो सवाख यसँग शङ्का मध्येक यसो ख्रिस ठाकेमा मसिंह ख धका पक्काइना त पुरानो नियम या दक्कु भविष्यवाणी पुग्न उचित वेकन बेतलेहेमे जन्म जुइबु वेक क्यापिन त ल्याकेबु वेकल सिपिन त मर्केबु वेकल कथा चुना हेरिसेमे दुखाउनेबु वेक या त अपराधी थिए बेवारी आइबु वेक दुःख सिबु वेक सी वो डक्ले तमदाउनु ख वेक टुकान मुहाना वै तैगो भविष्यवाणी समावेश चुकुदो हितोपदेश 25:2 के धारा तगुदो परमेश्वर सुस्का तौ भुलि हे चिस वैकया त हरे अनि जुसुपिन त इन्स थोख उला अर्थ चुना बिगुले हे हने बाइबलले युगको सत्यता क्रिस्चियन जनसङ्ख्या त भङ्गो वर्ग त्यस मसुल छ परमेश्वर ठाके हे इच्छा यही पिण्ड मोयाको सत्य ख चुनेगो बचा बिहा दिएको दु मत्ती 5:6 धाराको दु परमेश्वर या नहने धर्मी ठहरे जी त पिचाका पिचाका जीपी मनु त धन्यकै ख परमेश्वर इन त लुदङ्गादी यो पिङ्गो निम्ति यसो ख्रिस्टबाट ताथ्यमा मसिह धका मसीको पि सकसित अनन्त जीवन दि अनि चिस यसो या त जी प्रभु धका स्वीकार्याना धार्मिकताके यसो हुनेको प्रतिबद्धता किनके भने भविष्य या सहस्राब्दी राज्य या यिनले मान्छे त युगको सिर्पा काय बुझ्ने यो पिङ्गोले थौयाको वर्ष निर्णय दिने शिक्षकसित नौ परमेश्वर सुधारीमा जय मसीह।

0: कुनै पनि चाड पर्व अथवा विशेष अवसरमा के तपाईँ नयाँ फेसन खोज्दै हुनुहुन्छ? स्टाइल पनि गुणस्तर पनि अनि मूल्यमा पनि बचत चाहिएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् राजु फेसन हाउसमा। विगत 3 दशकदेखि यहाँहरूको सेवामा समर्पित जेन्ट्सका सम्पूर्ण लुगा कपडाहरू, सिरदेखि पाउसम्म अहिलेको ट्रेन्डिङका लुगा कपडाहरू, जुत्ता चप्पल, फर्मल तथा क्याजुअल रेडीमेड सम्पूर्ण कपडाहरू एकै छाना मुनि 20% छुटका साथमा राजु फेसन हाउसले धमाधम लुगा कपडाहरू उपलब्ध गराइरहेको छ। साथै विभिन्न चाडपर्व तथा मेलाहरूमा विशेष छुटका साथमा लुगा कपडाहरू उपलब्ध रहेको छ। यसै विज्ञापन सुनेर आउनुहुने सम्पूर्णलाई विशेष छुटको व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदछौ। राजु फेसन हाउस, तपाईँको आफ्नै फेसन गन्तव्य। प्रोप्राइटर राजु ताना बासु। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9851927740, 9841362013। राजु फेसन हाउस, टुरिज्म मार्केट, राम मन्दिर, भक्तपुर।
1: आछी निलादेको दोले छ्या आत्तिकी ज्याजो स्पार्क माई फेथ जुगु विश्वास के चमकया बेउ। जी अमृता महर्जन कार्यक्रम स्पार्कमा फ्री थियो। जीवन श्रृंखला भाग 12 के शीर्षक सित नसको छ। जीवनै घुमै घुमै तस्क थाकै फु अनि झाबलै जीवो यो कथा ज्या मजै फु। जीवो जीवन घुमै घुमै अझ्यागो अवस्था नहुने गुजुरे सित यो पहि चोट यो स्याचा बी यो पटक ख्रिस्टियन पेस थगो नस परमेश्वर छजागो ख जुजुबी थो तस्करी बालागो योस ख अनि विचायाना लिस बिमागो योस गुरु ख्रिस्टन देश परमेश्वरी बुद्धि तस्करी तधौले सुनाना थुइके फलुखु वैकया नपो छिस थुइके मफुल ढका जक्क धाइबुले सन्तुष्ट जु पक्का न परमेश्वरी बुद्धि जीवु सोया योको तधौ ख दैव ख छु सत्यता दु पक्का न परमेश्वरी बुद्धि जीवु सया युक्तु तख दैव ख छु सत्यता दु अचिसा जी त विश्वास दुखी जी कबीर छी हो जी ठुके फलमुखो छु ख दु अनि वही जीवु निधि परमेश्वरी निस्वार्थ मतिना ख थौ जिस ख लातिनु हो ख न वही ख चोटो पीडा जागु संसारे कथिना परमेश्वरी मतिना किनु अदम्या केवे वो अदम्या पाप स्पष्ट यही परमेश्वर जित जीवने थगु ही विकल्प याए त स्वतंत्र इच्छा दिया दिगु दु जिस परमेश्वरी उस कथ वे कया अजु साय पुगु आशीर्वाद या अनुभव याए फु अने वे अनुभव ले फै वो जिस परमेश्वरी योजना या त अस्वीकार याए फु अने जीवो अविश्वास कारण परिणाम भोगे या फु आदम घुमो न मिलो सीमा मिलो मुखु धका परमेश्वर के आज्ञा माने नया गु निर्णय यागो ने थौ तक विनाशकारी परिणाम त्याहाउन अनि थौ तक दया सुन भजन सुखको अध्याय यो न्यागो खुबु पटके दया त बुदो हे परम प्रभु छि न्याले दया सुनि गु माया आकाश थे तर अनि छि विश्वास याहे बमख दयागु ख सुपया सोया न फुलाउने छी धर्मी म ख दैगु ख पहाड छे टिसिला छिगु न्याय समुन्द्र छे तजा छी मुनु व पशुया त विचारया नारी थ बानागु पद ख तर छिज दुज व पिनिया पास या त मोगु मुक्त हे थाकुगु दुख व कष्ट छिगु लुग्ने इशाना सुंगुली तर छेज दुज वा पिरिपे पास्टे या त मोगु दुख हे थाकुगु दुख कष्ट छिगु लुग श्याना सुंगु इले आकाश थे तजाम मो समुद्र थे कावो म परमेश्वर या विश्वास योग्य मचिना या त गठियाना व्याख्या यागु परमेश्वर छाइन्द बसे मयागु ख अले वो समस्या जुन पाखे पनि मसुत थो न सयालिस मानिगु पैसा जीवु जीवने हस्तक्षेप याना दुःख स्वीकार ल्याए त उहाँले याना दिमा धका परमेश्वरकै प्रार्थना ल्याएमा व्यवस्था श्री छबु अध्याय खुबु पत्के धात उदो बल्ला उ साहसी जु इपिरिसे ज्ञामते उहाँ थर थर ख्यामते छाद आशा परम प्रभु श्री परमेश्वर हे छिमी जिसे चाहे वेकल सित गुरे तोता दिन मुखो अनि त्यागे याना दिन मुखो जिसो जीवने गुरु र पीडा वो दुख फेमाले परमेश्वर छिट गुम्रे न तोचे मुखो वेक न्याम्ले न छी नपन्दु छिट सान्तुना वो आशा पिया छु रोमी झिङ्गेको अध्याय झिङ्गाको पत्के धात बुदो लसता चोपे नाप छिपे लेता अनि कया चोपे नाप छिपे खो जीवो सुख या इले न परमेश्वर छी नपन्दु जिस मसो सानो वो लसता वो सुख छी वोया सुना दि बुदो अनि छी दुख जीवले वेकन छिट के पुइ अनि सान्तुना दि परमेश्वरिया मचिना सत्यता धाइबु वो छिट दुख मधुबु जीवन बिधका बच बिहादिबु मुखो वैकया मचिना छिट सुबस बिहादिबु दुर्धासा चिसो उगु थाकुबु इला त पार याइबुले वैकन छिना पर्दै अनि चिसो वैकया त विश्वास याइबुले वैकन छिट छिबु छुबु निपाचे सदा मुक्त याना वैकयु आनन्द शान्ति चारो जीवन मै बित है भजन सुगु अध्याय छु पत्यो धात गुदो जीवो दुखया त छि नसताया प्याक्ने यादिन जीवो दुखया त भूमिका छि नसता जाका दिन परमेश्वरके गुब्ले बुत ध्या विचाया मते वेकया गुब्ले कोमसागो मतिना भलासाया छि फेमाला सुङ्गो थाकुगु इलेन वेकया मतिना सित थो वचन लिना दिने सित परमेश्वर सुव्यादिमा जयमसि शीर्ष नपुकिनु हे जक बाइबलीय प्रभावशाली शिक्षक वा आत्मिकी नपुकेना दिन सोमन भिक्टर चोयादीको घोषणा जीवन हे नेपाल भाषा या रेडियो ज्याजो स्पाकमा एफएम जीवन विश्वास के चमकया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा सफलतया दिफै उचिया नीति जिनके जिनको मोबाइल नम्बर 2 98 55 33 39 98 65 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुनी सित युक्त युक्त सुधा परमेश्वर सित सवादीमा जय हस्तु।

0: 8 PM. Rapko After Zoo.
1: शान्ति स्पेशल फुड प्राली पाण्डुबजार हाइट भक्तपुर गोल्डन कलेज सृजना नगर भक्तपुर विराज डेन्टल हस्पिटल प्राली कट्ठाघर भक्तपुर निःशुल्क उपचार तथा परामर्श सेवाको लागि फोन नम्बर 98510 31257

0: मतलब छ
1: आँखा को डॉक्टर हो इसलिए मोती बिंदु भाषा मैं भेटी क्लिनिक में आँखा देखा आए भी गाला में समझ बहनी जीव्रो जीव्रो
2: नमस्कार म कलाकार दीपक राजगिरी तब सुन ग्रेस एफ एम 107.6 मेगाहर्ट्ज सुनऊ र सुनऊ।